0: बस एक औरत है, इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जानदी है, पर मैनू नहीं हरा सकदी।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते पारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि उह किहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान धार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानदी सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वो मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया, ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस

0: पर जे तुसी मेरे नाल दोस्ती करना चाहो उस विच कोई दिक्कत नहीं।
1: कुड़ियां जिंद कौर वल अचंभे नाल वेखदियां हन।
2: ठीक है, वाह, दरअसल असी कदे किसी नूं इदां नहीं वेख्या।
3: मेरा मतलब केवल कुछ गुंडे जो फिल्मां विच हुंदे हन है।
0: तुसी फिर सही फिल्मां नहीं देख रहे। मेरे चाचे ताए ते मम्मी पापा भी दस्तार सजाउंदे हन। मेरा परिवार मेहनत करदा है ते लोड़वंदा दी मदद भी करदा है। जेकर तुसी भुखे हो तुहानू पता है तुहानू किहदे कोल जाणा है। उन्होंने दस्तारा सजाइयां होणगियां। मैं इस करके दस्तार सजाउंदी हाँ ताकि मैं वार वार अपने आप नूं चेते करवा सकां कि मैं कोमल नहीं बल्कि बहुत बलवान भी हाँ। मैं एक योद्धा भी हाँ ते एक शहजादी भी हाँ ते मैं इत्थे होरां दी मदद करन लई हाँ।
3: वाह, सानू नहीं पता सी कि इसका किन्ना गूढ़ा अर्थ है।
1: हाँ, इते असल विच बहुत वधिया जापदा है।
2: हाँ, मैं ते बहुत प्रभावित हुई हाँ, असी तुहानू गलत परख्या।
0: मैं अरदास करदी हाँ कि असी कोमल ते शक्तिशाली औरता बनीए जो इस दुनिया नू रोशन कर देन। मैं तुहानू जान के बहुत खुश होवांगी जे तुसी चाहो।
1: एहो जापदा है तुहानू भी बहुत कुछ जानकारी है। असी भी थोड़े बारे होर जानना चाहवांगे।
3: कि अज तुसी खाने लई साडे नाल बैठना पसंद करोगे?
0: हाँ जी, क्यों नहीं है?
1: ते सारियां कुड़ियां हुण एक नवी सोच नाल अग्गे वधदियां हन। जदों असी बीबी शरण कौर वर्गे शहीदां नाल जुड़दे हाँ पूरी कायनात विच ऐसा कुछ नहीं जो सानू बदल सके जां डरा सके।
4: असी हमेशा लोड़ पैण ते अंग संग सहाई हुंदे हाँ। असी शहीद इत्थे गुरु दे प्यारियां दी राखी लई सदा मौजूद हाँ। अपने सिक्खी दे प्रेम लई सदा दृढ़ रहो ते असी भी तुहाडे नाल रहांगे।
1: असी यह हमेशा याद रख सकते हाँ कि गुरु गोबिंद सिंह जी साढ़े पिता हैं ते माता साहेब कौर जी साढ़े माता जी हैं।
5: खुशियां दे जयकारे गजावे सो फते पावे शहीदा सिंघा सिंघणियां दे मन।

ये कहानी पसंद आई होवे तो इस तरह दिया होड़ी वीडियो सब्सक्राइब करो।